गणेश बाहन मुसो कुमार बाहन मयूर था गणेश बाहन मुसो अक्कल डेराई ते मुसा को बानी मात्रै छु सिन्दूर दुबो फुलमाला पूजौ गणेश वाला सिन्दूर